0: ഫിക്സ് പ്രൈസ് ഹുണ്ടായിൽ നിന്നും ജൂലൈ 20-നകം ഒരു പുതുപുത്തൻ ഹുണ്ടായി കാർ സ്വന്തമാക്കൂ. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് മെഗാ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ വമ്പൻ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. ചുങ്കത്ത് പ്രൈസ് ഹുണ്ടായി, കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, നിലമേൽ. ഫോൺ 8714624012.
1: मैं हूँ आरजे आकांक्षा और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्यार भरी आवाज लाइव प्रोग्राम, जो सिर्फ एक गीत ही नहीं, एक जज्बात और एक सुकून होगा और सबसे खास सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के करीब होगा. तो सुनना मत भूलिए प्यार भरी आवाज सिर्फ और सिर्फ आरजे आकांक्षा के साथ. हर सुर मोहब्बत, हर बात में सुकून, हर बात में सुकून. हर ट्यूसडे सुबह 11 बजे कॉल 0474-293-1111. सिर्फ कम्युनिटी रेडियो बेंसिकर 107.8 पर.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी चेहरे की मुस्कान बनी रहे. और बाकी आप सबका दिन कैसे जा रहा है? बिजी जा रहा है या आराम चल रहा है? आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज. मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी दोस्त होस्ट आरजे आकांक्षा, ओनली ऑन 107.8 पर. ट्यूसडे का दिन है और प्यार भरी आवाज का दिन है, जो बनती है खुशियों के साथ, गीतों के साथ और दिल से दिल तक पहुंचने वाली ढेर सारी बातों के साथ. तो जो भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं या किसी सफर में ड्राइव कर रहे हैं या कुछ दोस्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है. दोस्तों थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिएगा अपने रेडियो का, क्योंकि आपके फेवरेट गानों की बारिश होने वाली है. वैसे बादल वाली बारिश तो आसमान में है, पर आपकी फेवरेट गानों की बारिश यही रेडियो बेंजिकर 107 पर होने वाली है, वो भी प्यार भरी आवाज पर आरजे आकांक्षा के साथ, ओनली ऑन 107.8. कीप लिसनिंग. और दोस्तों ये गाना उन सभी मौसम जिनको बारिश बहुत पसंद है, ये गाना उन सब के लिए जो खुशियां हमें देती है जब भी हम लोग ये गाने सुनते हैं बारिश के टाइम पे. तो चलिए सुनते हैं, कीप लिसनिंग.

0: सच ही कहा है। कोई भी पूछेगा सावन कहाँ से आए तुम, इतनी दिनों की गर्मी और बस रात में बारिश, फिर भी दिन भर गर्मी से बेहाल। तो ऑफ कोर्स ऐसे अचानक से बादल छाएंगे तो कोई भी पूछेगा ना कहाँ से आए तुम। तो चलिए शुरू हो गया है फेवरेट गानों का सिलसिला। डायल करें 04742931111 पर, 04742931111 पर। मिलते हैं आज के अगले आवाज से। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया चल रहा है, आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। कैसे हैं और कैसे चल रहा है आपका दिन?
1: बस आराम कर रहे घर पे।

0: ऐसा हो सकता है। हेलो
1: हेलो बोलिए।
0: आए रे मेरे जिंदगी में तू बहार बन गई।
1: हाँ राजा हिंदुस्तानी से है वो गाना है, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जी
0: ओके थैंक यू।
1: ऑल राइट, बाकी सब बढ़िया?
0: बस बढ़िया चल रहा है, ईश्वर की मेहरबानी से।
1: ऑल राइट, तो चलिए फिर सुनते हैं ये आपका फेवरेट गाना और कोशिश करती हूँ ये प्यार भरी आवाज आपकी जिंदगी में ऐसे ही बाहर लेते आए। सुनते रहिए प्यार भरी आवाज रेडियो 107.8।

0: हाय क्या मस्त गाना है दोस्तों। चुरा के दिल मेरा कोरी या चली, ये सिर्फ सॉन्ग ही नहीं, ये 90s का फुल ऑन फ्लर्टिंग मस्ती और फिल्मी रोमांस का पैकेज है। ऐसे गाने सुनते ही लगता है कि जैसे दिल भी डांस करने लग रहा है। मैं तो सच में कर रही थी ये गाना सुनते सुनते डांस। और सच कहूँ प्यार में थोड़ी दिल चोरी भी तो बनती है दोस्तों। आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज विथ योर दोस्त आरजे आकांक्षा। सुनते हैं अगली आवाज, किसकी है कॉलर दोस्त बताइए। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से?
1: शिविन ताम्रकुलम से।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे हैं? कितने ठीक है?
0: मैं आपको क्या लगता है मेरी आवाज से बताइए, आप ही बताइए आज मैं कितना ठीक लग रही हूँ।
1: मैं बताइएगा छोटी से एक एक ठीक है।
0: ओके बताइए।
1: ओके मैम, गाना बोल रहे हैं।
0: कौन सा गाना मुझे बताइए?
1: बॉडीगार्ड फिल्म की तेरी मेरी।
0: तेरी बॉडीगार्ड फिल्म से तेरी मेरी, वो तेरी मेरी प्रेम कहानी।
1: यस।
0: ओ
1: तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल बोल बुझूं ये बयान हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ले है नहीं दोल बुझू में ये बयान हो पाए।
0: बहुत ही खूबसूरत से गाया, दो लफ्जों में तो बयान नहीं हो पाया पर ये गाना सुन के शायद कुछ एहसास बयां हो पाए, देखते हैं। ओके यू टू हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर कॉलिंग, कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज। ये खूबसूरत सा गाना तेरी मेरी प्रेम कहानी ओनली ऑन 107.8 पर।

बहुत ही खूबसूरत गाना था ये। गाना रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता है मेरा गाने का भी ये मन कर रहा था, मतलब मैं स्टूडियो में जैसे गाना प्ले हो रहा था बैकग्राउंड में, मैं भी यहीं पे गाना गा रही थी, तो कुछ दो लाइन सुना तो यही गाने वाले।

0: ये है प्यार भरी आवाज दोस्तों आरजे आकांक्षा के साथ ओनली ऑन 107.8 पर। डायल करें 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। सुनते हैं अगले दोस्त की आवाज कौन है और कहां से है। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: इतना अच्छा,
0: ओ शुक्रिया शुक्रिया।
1: नहीं गया था, हमारे को मिला नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नहीं हमारे को नहीं मिलेगा तो हम पूछते हैं क्यों, कस्टमर यानी श्रोता ज्यादा आते हैं ना, इसलिए नहीं मिलता है। कमती है तो फटाफट मिलेगा, वो फायदा है, फायदा नहीं है ऐसा नहीं हो तो ये अच्छा है। कभी मिला नहीं हो तो भी हम खुशी है, क्यों ज्यादा आदमी आए कॉल करने
0: जी का जरूर हमें है, पता है हमें नए दोस्त की भी जरूरत है।
1: हाँ सही बात है यार, आज इतना अच्छा होगा सिंगर है यार अभी वो
0: शुक्र। पता है मैं गाना, वैसे मैं गाना भी गाती हूँ। मुझे पसंद है गाना गाना।
1: सही बात है, हमारे को भी ये हम अभी बोला था ना, ये गाने में बहुत अर्थ है। तुम जिंदगी में हम लोग को जिंदगी है, ये जिंदगी में हमको हम लोग को शाश्वत कुछ भी नहीं है। ये वाला गाने हम मितवा

0: ये एक गाना ज्यादा हम नहीं गाते है, क्यों वो थोड़ा कटक गए हैं, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अर्थ वाला गाना है। ये गाना सुनने का तो हम लोगों को जिंदगी में हम लोगों को कुछ भी साधु साधन नहीं है, दर्शन का जिंदगी है। ये जिंदगी में इतना भी मुश्किल करेगा भी फायदा नहीं है। ये गाना का वो एक एक लाइन इतना प्यूरिटी है, वो तो गाना सब आदमी सुन के
1: अब ये गाने के आपने जो भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, गाने का मीनिंग, गाने में पावर, गाने का सेंटेंस, ये हमको तभी पता चलेगा, तो हम सब मिलके सुनेंगे। क्यों सही कहा ना,
0: थोड़ा सीखने के बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये गाने हम थोड़ा ज्यादा गाए।
1: कोई बात नहीं, कॉल करने के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप लिसनिंग। प्यार भरी आवाज पे ये खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन 107.8 पर।

0: ये था खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो बेंजीगर 107.8 पर. चलो अभी लास्ट सॉन्ग का नंबर आ गया है और फिर अपना फेवरेट सॉन्ग देखते हैं कौन प्ले करना चाहते हो, कहाँ से है. हेलो
1: हेलो आकांक्षा जी,
0: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया.
0: कौन बात कर रहे हो, कहाँ से है दोस्त?
1: मेरा नाम जानू है.
0: ओके okay.
1: और मैं अब जानू
0: ओके okay.
1: और मैं त्रिवेंद्रम से बात कर रही हूँ.
0: mm-hmm.
1: आज मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी भाभी शीला के लिए.
0: ओके
1: वो वैसे शी इज एन अमेजिंग पर्सन और अभी 60 प्लस होने के बाद माउंट कैलाश भी जाके आई है.
0: ओ वाओ,
1: जवानी का नाम छोड़ने की बात ही नहीं उसका.
0: पता है 60 के बाद असल लाइफ शुरू हो जाती है. 60 के बाद ही यस. कौन सा कहना?
1: शीला की जवानी.
0: क्या बात है, शीला की जवानी. आशा करती हूँ ये उनकी जवानी हमेशा बरकरार रहे ऐसे ही इस गाने के जैसे. चलो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा और हाँ आकांक्षा की तरफ से और पूरे रेडियो बेंजीगर की तरफ से आपकी भाभी का नाम क्या बताया?
1: शीला.
0: ओके सो आकांक्षा की तरफ से और रेडियो बेंजीगर की तरफ से शीला को अपनी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां. तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, गाना शुरू होने वाला है. ये बड़ा ही डांस नंबर पावरफुल पैक और ये गाना एक नंबर है. मतलब अगर आप सुन रहे होंगे तो ये गाना आपको डांस थोड़ा सा तो करवाएगा. मैं तो करने वाली हूँ ये गाने पे क्योंकि ये मेरा फेवरेट गाना है. तो चलिए सुनते हैं ये पावर पैक डांस नंबर शीला की जवानी ओनली ऑन 107.8 पर.

तो दोस्तों, इसी के साथ प्यार भरी आवाज यही समाप्त होता है। आप सबके साथ ये प्यार भरा और फेवरेट गाने का पल बांटकर हमेशा की तरह दिल खुश हो गया। मैं हूँ आपकी आरजे आकांक्षा, मिलूंगी अगले ट्यूसडे यही टाइम पे सुबह 11 बजे, और फिर लेकर आऊंगी ढेर सारी गाने, यादें और दिल से जुड़ी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी में प्यार पॉजिटिविटी बना के रखिएगा। कीप लिसनिंग, कीप लविंग, बी काइंड टू एवरीबॉडी, टेक केयर।